0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङ, कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर अधिकारी एवं बेसी सहर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति परिवार बेसी सहर नगरपालिका 8 लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। अध्यक्ष युवराज अधिकारी उपाध्यक्ष विश्वबहादुर गले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफे एवं दोर्जी गांवपालिका परिवार नौथर सेरा लमजुङ

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङ, उपाध्यक्ष क्षेत्र बहादुर गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शमशेर गुरुङ एवं दुधपोहरी गाउँपालिका परिवार गौडा लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगल 95 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालय राइनस नगरपालिका 8 लमजुङ।

नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाई दिदी बहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। भूमिगत जल स्रोत संरक्षण र संवर्धन गरौं, खानेपानी सुरक्षा योजना लागू गरौं, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको मौलिक हक अधिकार हो। कार्यालय प्रमुख उत्सव पोखरेल एवं संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय विशेषह नगरपालिका 8 लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसरमा जिल्लावासी सम्पूर्ण बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइराला, उपप्रमुख भवानी केसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश कर्ती एवं सुन्दरबजार नगरपालिका परिवार सुन्दरबजार लमजुङ।

0: नववर्ष 2083 को पावन अवसर में जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई दीदी बहिनी लगायत संपूर्ण नेपाली सुस्वास्थ्य सुख शांति एवं समृद्धि को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी सुंदर बजार नगरपालिका वडा नंबर 4 को कार्यालय संपर्क फोन नंबर 9856045258।

वर्ष 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगाय जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अध्यक्ष ओम बहादुर घिमिरे प्रधानाध्यापक विमल अधिकारी यूनिवर्सल एकेडेमी विद्यालय परिवार बेसीतह नगरपालिका 7 लमजुङ।

अमावस्या 2083 को पावन अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक विद्यार्थी लगायत जिलावासी संपूर्ण बा आमा दाजू भाई तथा दीदी बहनी में सुख शांति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मूल्यमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। हाथ में सेप ओठ में हाँसो प्राविधिक शिक्षा समृद्धि को साचो। 2082 साल को एसईई परीक्षा में सहभागी भएका संपूर्ण विद्यार्थीहरूमा उत्कृष्ट नतिजाका लागि राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालय परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ। यस राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गराइने कार्यक्रमहरू डिप्लोमा तह कृषि बाली विज्ञान, डिप्लोमा तह वन विज्ञान। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क फोन नम्बर 98560124 र 98560124895। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद राइनस बहुप्राविधिक शिक्षालय राइनस नगरपालिका 8 लमजुङ।

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार
1: स्वास्थ्य का हर एक पक्षलाई समेटेर तयार गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार
0: एसडीसीएस नमूना सामुदायिक अस्पतालको प्रस्तुति रेडियो मर्तंगी रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे उडारबाट एकैसाथ प्रसारण
1: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे।